आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

0: स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्यावस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।
1: याद दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाजी ताजी को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की इस बात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

2002 में सुदेशीपंत अमेरिका में रहने वाला ईरानी कवियों में से एक महान ताजिक कवि अब अब्दुल्लाह रुदकी के जन्म के वर्षगांठ को मनाने के लिए ताजिकिस्तान आता है और रुदकी के मकबरे का दौरा करता है। मसूदीसीपंत इस यात्रा में ताजिकिस्तान के कई ऐतिहासिक और प्राचीन नगरों का दौरा करता है। ताजिकिस्तान के ऐतिहासिक नगरों और स्थानों को देखने और उसके संस्कृति से परिचित होने के बाद इसके प्रभाव पर मसूदीसीपंत ये कविता लिखता है।

मासूदी सिपंत का जन्म सन 1943 में खुरासान के पश्चिम सरबिशा जिले में हुआ। उसका पिता सैनिक था और सिपंत साहब ने भी स्कूल के बाद पुलिस विद्यालय में पढ़कर ईरान पुलिस के विभिन्न पद में सेवा की। सन 1980 उसने अमेरिका जाके पलायन किया। सिपंत बचपन से शायरी से रुचि रखता था। उसकी शायरी ईरान के समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है। साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था। मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूदी सिपंत ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा, मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा और इस तरक्षण के एक हॉल में ताजिकिस्तान की सरकार के लिए प्रस्तुत किया। मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ। ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है। उसी इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे उम्मीद है

जैसे हमने बताया कविता मैं आर्यन हूँ मसूरी सिपान द्वारा सन 2002 ताजिकिस्तान में लिखा हुआ। इसके बाद इस कविता को अमेरिका लेकर उसे फारसी भाषी कलाकार मरियम जलाली और उसके पति को गाने के लिए पेश किया। श्रीमती मरियम जलाली का जन्म सन 1948 को ईरान में हुआ। मरियम जलाली अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाती है पर ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद इस देश में कैलिफोर्निया में रहती है। मरियम जलाली ने सन 1995 कला कार्य शुरू करके पहले बार एक फिल्म में जिसका निदेशक बहमानजरीनपुर था भाग लिया। उसके बाद उसने बहुत दूसरे फिल्मों में भूमिका निभाई। मरियम जलाली के व्यवसायी मुनीम था और इस क्षेत्र में उसने विभिन्न कार्यालयों और कंपनियों में काम किया है, पर उसकी आवाज भी अच्छी थी और उसने कई गाने गा के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, विशेष रूप से दरो नफस की भी मीराम दरो अरजुए तुबोशम, नाजुक दिल, बारिश और मैं आर्यन हूँ गानों द्वारा बहुत लोकप्रिय हुई है।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा, खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

0: स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है। पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।
1: याद दिलाते कि आप अभी रेडियो आवाज़ी ताजी को सुन रहे हैं। कार्यक्रम की इस बात में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है, मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

0: Masudi sifantka janam san 1943 me Khurasan ke paschim Serbisha zile me hua. Uska pita sainik tha aur sifant saab ne bhi school ke baad police vidyalay me padh kar Iran police ke vibhin path me seva ki. San 1980 usne America ja ke palayan kiya. सिपान बचपन से शायरी से रुचि रखता था। उसकी शायरी ईरान के समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है। साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था। मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूद सिपान ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा, मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा और इस तरक्षण के एक हॉल में ताजिकिस्तान की सरकार के लिए प्रस्तुत किया। मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ। ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है। उसी इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि साल के 6 महीने मैं ताजिकिस्तान में रहूं और कई विद्यालयों और रेडियो या टेलीविजन चैनल में काम कर सकूं। साथ ही आशा है कि ताजिकिस्तान के अभियायत्र मुझे मिलेगा।
1: از نسل آفتاب از شهد ماهتاب از اوج قل

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।

होता है। हालांकि किसी भी प्रोफेशन या क्राफ्ट की बारीकियों को पूरी तरह से सीखने में बहुत मेहनत लगती है। जब बहुत से लोग आपके प्रोडक्ट्स की मांग करती है और बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, तो आप सारी परेशानियां भूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि आपके पास एक क्राफ्ट है। याद दिलाना है कि 24 से 26 मार्च 2025 तक नवरोज के त्योहार के दौरान ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के देख रेख में दुशांबे में ताजिकिस्तान का इंटरनेशनल जरगरी फोरम और प्रदर्शनी हुई थी। ताजिकिस्तान गणराज्य के उद्योग मंत्रालय और नई प्रौद्योगिकियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि इस मंच का उद्देश्य दुनिया भर के 15 से अधिक देशों के कारीगरों, डिजाइनरों, निर्माताओं, निवेशकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। ये आयोजन ताजिक यहनी परंपराओं को लोकप्रिय बनाने, अनुभवों को साझा करने और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रकार का मंच बन गया है। इस तथ्य के बावजूद कि ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता के अवधि के दौरान गहने ऐतिहासिक रूप से एक महिला और पुरुष पेशा रहा है, 21वीं सदी की शुरुआत से ताजिक लड़कियों ने इस पेशा में रुचि दिखाई। हाल ही में गहने कला उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदल रही है। आज देश में शीर्ष प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और अधिक से अधिक युवा इन केंद्रों में एक पेशा सीख रहे हैं। इस संबंध में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमामअली रहमान ने मजलिस-ए-उली को अपने संदेश में संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अगले 5 वर्षों में 1,400,000 नौकरियां बनाने और इस प्रक्रिया में छोटे व्यवसायों, शिल्प और लोक शिल्प की भूमिका बढ़ाने का निर्देश दिया। याद दिलाना है कि ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमामअली रहमान के पहल पर साल 2019-2031 को ताजिकिस्तान में ग्रामीण विकास, पर्यटन और लोक शिल्प के वर्ष घोषित किया गया था। इस पहल ने पारंपरिक लोक शिल्प को पुनर्जीवित करने और गहने सहित राष्ट्रीय शिल्प के लिए अधिक कारीगरों को आकर्षित करने में मदद की है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय ने इन प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह और संरक्षण का भी आयोजन किया है और 1,000 से अधिक गहने जैसे झुमके, कोलर, ताले, केस्टिलोस, ब्रेस प्लेस, ताबीज, अंगूठियां, कंगन, गर्दन के गहने, टोपी, बेल्ट और आदि संरक्षित और प्रदर्शन कर रखा गया था। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी जो आपने सुना। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।